दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

0: क्या बात है। अब देखते हैं सेवन महफिल अनप्लग्ड में आपने आना है, ticketa2.com पर आपने बुक करना है अपना टिकट, वो है गोंद जिमखाना में 26 सितंबर। लेकिन इस सैटरडे आपने आना है एक मॉल पर जहां आपके लिए कितनी गेम्स होंगी, तरह तरह के सेवन गिव अवेज हैं, गिफ्ट्स हैं, इनाम हैं वगैरह वगैरह आपको मिलेंगे। 19th का मैं आपको बताती हूँ कि आपने कहाँ आना है। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि सबसे पहले जो मैसेज मुझे मिला है वो किसका है। ये है सोनल मोदा, गुड मॉर्निंग प्रवीण जी, थर्सडे, हैप्पी थर्सडे। ओके, शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, आपने कहा है कि नॉन स्टॉप 2.3 मिलियन न्यू रेड ब्लड सेल्स एवरी सिंगल सेकंड। कहते हैं आपके जिस्म में 23 लाख नए लाल रंग के ब्लड सेल्स बनते हैं, इसका मतलब एक दिन में 200 बिलियन नए रेड ब्लड सेल्स। इट्स योर ब्रेन मैरो, बोन मैरो। बिल्कुल सही शमीम, दैट वाज अ गुड वन। और सना काना, एवरीवन हैज टू आईज बट नो वन हैज द सेम व्यू। अमीर अली राणा, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में लोगों के बिहेवियर से एक सीख जरूर सीख लेना, वो अपने हों या पराए, उन्हें इतना है अपना, उन्हें इतना ही अपना समझो जो तुम्हें अपना मानते हैं। क्योंकि जब अपनों को ज़रूरत से ज़्यादा समझते हैं तो कभी कभी वही लोग हमें गिरा हुआ समझने लगते हैं। कहते हैं कि इतनी अहमियत ना दो अपनों को कि वो आपको ही समझें कि आप बड़े गिरे हुए हैं। इसलिए जियो तो उनके लिए जो तुम्हारी कदर करना जानते हैं। वाकई अमीर अली राणा, ये बड़ा सही है जो आपने कहा, हकीकत है। वासुदेव हिरानी, आपने सही जवाब दे दिया है वासुदेव हिरानी। फिर भी मैं सवाल पूछूंगी आगे। भरत गंगाराम वंदनीय प्रवीण जी के लिए सबका प्यारा और सबसे न्यारा बेमिसाल अंदाज। क्या बात है, इनको तो होना चाहिए, एडवर्टिजमेंट्स लिखने चाहिए इनको। और यहाँ पर है एमएल विश्वकर्मा, शुभ प्रभात, कहा है जिस मछली से समुंदर में सब डरते थे, मछली मारने के बाद चिंतियों का भोजन बांटती है। ओके, ताकतवर की ताकत हमेशा नहीं रहती और ताकत हालात नहीं ही होती। एमएल विश्वकर्मा, ये मुझे लगता है थोड़ा सा स्पेलिंग का आपको देख कर करिएगा वापस। और जो आपने कहा है कि समंदर में जो टकराव हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है टकराव। ओके
1: जी, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, ये गाना फिल्म छाया का है जिसको लता मंगेशकर और तरज महमूद ने गाया है, जिसको राजेंद्र कृष्णा ने लिखा है और जिसकी धुन सलील चौधरी ने बनाई है। गए ये गाना सुनील दत्त और आशा पारेख पे फिल्माया गया है। गाना अच्छा लगा, सुनाने के लिए आपका शुक्रिया।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे। अब अगला गाना भी बहुत ही खूबसूरत है।

0: और जो मिसेस धंजल आपने लिखा है वो करके देखते हैं और इसके इससे पहले रंजन विनोद लंदन में है तल्लत का गाना सुना के आपने क्या खुश कर दिया है सुबह सुबह बहुत अच्छे रंजन विनोद भी फैन हैं तल्लत की
1: कितनी प्यारी लाइन है ये कि अगर आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती दर्द अगर ना हो तो खुशी की कीमत ना होती अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाली की जरूरत ना होती शुक्रिया सुबह का प्यार सलाम सलमा आहमद किसुम
0: और समीन आपने वो महफिल अनप्लग तो 26 सितंबर है लेकिन 19 सितंबर आने वाला जो सैटरडे है आप सुबह आ सकते हैं 11-12 बजे कहाँ पर आवर मॉल लंगाटा रोड पर है समीन कैरन में आवर मॉल 19th आप आके देखें समीन के मॉल में कौन कौन सी दुकानें हैं सबसे मिलिएगा ईस्ट एफएम की पूरी टीम वहाँ होगी गेम्स होंगी आपके लिए गिव अवेज हैं समन इनामात हैं गिफ्ट्स हैं प्राइजेज हैं आप आइएगा बहुत ही अच्छा जैसे मेले जैसा होगा समा इस सैटरडे अवर मॉल लंगाटा रोड में

0: एक्चुअली सबसे पहले जो मैसेज आया था ना वो सोनल का था फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. गुड मॉर्निंग कहा है सबको. और हमारी एक रिक्वेस्ट है तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले. ओके सोनल कर लूँगी, ये आपकी फरमाइश पूरी हो जाएगी. लेकिन आपकी बहन रूपल ने कहा है कि देखो एक लाइन है, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. ठीक है, वो भी कर लेंगे. दोनों बहनों की फरमाइशें पूरी करनी है. और बाकी के तो मैसेजेस मैंने पढ़ दिए हैं. लेकिन रसीला कहती हैं कि गुड मॉर्निंग प्रणी, व्हाट अ स्टार्ट, सुपर म्यूजिकल जर्नी, सच अ प्लेजर टू जॉइन बैक. क्योंकि आप मसरूफ थी, कुछ जैन मज़हब का चल रहा था. और इमेजिन लुकिंग अप एंड सीइंग दिस ऑन योर फ्लाइट. इमेजिन कर रहे, तसव्वुर करें कि आप हवाई परवाज पर हैं. द कैबिन सीलिंग, जी हाँ समय सीलिंग ही उतर गई है. एयरलाइंस बोइंग 737 था, सेपहरन जो एयरलाइन है, आई डोंट नो विच वन, लेकिन स्वयं बोइंग 737 कितने हादसात में मुलविस हुआ है. इट फेल अपार्ट शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ फ्रॉम मशहद एयरपोर्ट. रिपोर्टर स्टेट अ टायर बर्स्ट ड्यूरिंग डिपार्चर विच लेड टू सिवियर इंजन डैमेज एंड इंटेंस टेरिफाइंग वाइब्रेशंस दैट शुक द कैबिन टू पीसेस. वुड यू एवर फ्लाई अगेन आफ्टर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस, लेट मी नो. समिन होते हैं हादसात, लेकिन मुसाफिर सफर करने से परहेज नहीं करते. इसका एक ही आंसर है, नो. करते जाएंगे, सभी करते जाएंगे. हालांकि सामने आप देखिए वो वीडियो जहां छत गिर रही है, हवाई जहाज की छत. ये सुना था कि पानी टिप टिप बरसता है कभी कभी लीकिंग रूफ से, वो भी हवाई जहाज, लेकिन ये नहीं देखा था कि छत ही गिर गई. जी हाँ, ये भी हुआ है, और वो बोइंग 737 के साथ. थैंक यू रसीला. ओसम, दो दिन के लिए मेहमान यहाँ, कहती है. मैं हमेशा नहीं कहती, लेकिन आपकी प्ले लिस्ट आज ओसम. शमीम साउथ अफ्रीका, बहुत शुक्रिया आपका. और जैसे कि मैंने कहा कि आप जब मैसेज मुझे भेजें तो आप अगर अरबी का मैसेज भेजते हैं तो वो मैं पढ़ के किसको सुनाऊंगी. प्लीज़ सोच समझ के आप उर्दू में भेज सकते हैं जो रेलिवेंट हो प्रोग्राम के साथ, ठीक है. और यहाँ पर हैं भूपी पटेल की सुमू, वो शिरडी वाले साईं बाबा, जिस वर्जन की आपको तलाश है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा. खैर अब लेते हैं जैनुल मोहम्मद, बहुत शुक्रिया. और मिसिस धंजल, प्लीज़ आप कर सकते हैं अपना मैसेज.
1: We unlocked Gavah for you. 22. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
2: Beauty, glamour, elegance and style. On 19th and 20th September, get ready to immerse yourself in the ultimate luxury shopping experience. Divalicious Nairobi 2026. You know Divalicious doesn't hold. So come be amazed by high-end fashion, exquisite jewelry, stunning accessories, chic home decor and so much more from over 30 celebrated designers. Happening at Trademark Hotel, Village Market on 19th and 20th September. Divalicious Nairobi 2026. Your luxury and shopping event awaits. See you there.
3: Back to Kenya's premier Asian mix. East FM.
4: East FM.
5: East

और किसी ने लिखा है कि सच कहो तो ऐसे एक्सपीरियंस के बाद समय हवाई जहाज आपने कहा है कि मन ना करे कि दोबारा फ्लाइट लूं, आपका नाम लिखिएगा कि आपका रियल नाम क्या है। सोनल मोदा आपको पसंद आएगा। चंद्रिका वासंत गोसाई एंजॉय कर रही हैं। अमीर अली राणा पविंदर लिरिक्स प्रेम की गंगा बहाते चलो, कितने ब्यूटीफुल हैं, आज के दौर में ये बिल्कुल सही बैठते हैं। चिराग पटेल फ्रॉम कराटीना, बहुत शुक्रिया आपका। और समय राजस्थान की मैं आपको खबर दूंगी, जहां दो महिलाएं तप्त कुंड, ये आपको पता होगा तप्त कुंड बद्रीनाथ क्या है, उसके बारे में सोचें फिर मैं आपको खबर देती हूँ।

कमाल है, आपको बहुत पसंद आया है जिन्होंने सोनल ने किया था। अब देखते हैं समिन के, ये जो है राजस्थान में दो महिलाएं तप्त कुंड बद्रीनाथ में गर्म पानी में डुबकियां लगाती चल बसी हैं। क्यों चल बसी हैं समिन? उसकी भी एक वजह है, 108 डिप्स का लक्ष्य था इन औरतों का। ये किसी यात्रा पे निकली हुई थी और यात्रा पे जाने से पहले या कहीं पहाड़ चढ़ने से पहले इस तप्त कुंड में इन्होंने 108 डिप्स ली, लेने की कोशिश की। एक की उम्र 63 साल 63, दूसरी की 71 71। यात्रा पे ग्रुप के साथ आई हुई थी। मंदिर जाने से पहले 108 बार पानी में डुबकियां लगाते हुए दोनों बेहोश हो गईं। सुबह के 5 बजे ये काम शुरू किया था। खैर, खानदान वालों ने पोस्टमार्टम ना करने पर लाशों को ठिकाने फिर लगा दिया था रस्मी तौर पर। उन्होंने कहा कि हमने नहीं करवाना पोस्टमार्टम। तो समझिए, ये डुबकियां लगाने का, अगर आपके पास कोई है इन्फॉर्मेशन इसकी तो बताइएगा।

0: कोई मुझसे पूछे, अगले गाने में दुनिया वाले पूछेंगे और वो भी किशोर का है समय। अब देखते हैं, चिराग पटेल ने, मैंने कहा कि हमें बताइएगा कि ये जो है 108 डुबकियां डिप्स पानी में, उन्होंने मजीद खबर दी है कि टू एल्डरली सिस्टर्स फ्रॉम राजस्थान बिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ट्रेजिकली डाइड आफ्टर लूजिंग कॉन्शियसनेस, बेहोश हो गई दो बहनें राजस्थान के भिलवाड़ा ज़िले में 108 तप्त कुंड में डुबकियां लगाने की कोशिश में। कहते हैं कि तप्त कुंड इन बद्रीनाथ इज अ सेक्रेड नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी का ये झरना, वेयर पिलग्रिम्स टेक अ प्यूरिफाइंग बाथ, जो यात्री जाते हैं ना वहाँ पर वो नहाते हैं अपने आप को पाक करने के लिए। बद्रीनाथ का जो मंदिर है उसमें जाना था, तो समझ वहाँ की। थैंक यू चिराग पटेल, बहुत शुक्रिया आपका। और शबीर अहमद फ्रॉम लंदन, आप सुन रहे हैं, सलाम अर्ज किया है सबके लिए। और मैंने आपको पूछना था समिन के पी एन एस हुनैन जा टकराई किसके साथ? अरेबियन सी, अरेबियन समंदर में टकराव हुआ है, पर क्या हुआ है? हुनैन का तसादुम, हुनैन पीएनएस हुनैन का तसादुम किसके साथ हुआ है ये मुझे आप बता दें। 07011061106।
1: This is East FM, Kenya's premier Asian mix. East FM, Kenya's premier Asian mix.
2: Sunday sham ta set ka low reminder 6 to 8 baje apna Punjab leke aunda hai chatpate topics, spicy galla te full on Punjabi culture diya vibes. Jive kende ne jithe Punjabi utthe masti pakki. So thoda hasna, thoda sochna, sab kuch milega sirf on East FM Kenya's premier Asian mix. Har aatvar 6 to 8 baje apna Punjab sponsored by the East African Ramgadia Board. Late na hovo par Punjabi timing di ijazat hai.
3: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
4: The sale at Nairobi Sports House is now on. Thousands of items, including sports equipment and clothing, from brands like Adidas, Reebok, Puma, Speedo, and Stiga. Hurry to the sale at Nairobi Sports House while stocks last. Branches in Nairobi, Mombasa, and Nyali. Purchase online for countrywide delivery from NairobiSportsHouse.com. Something for everyone. In the sale at Nairobi Sports House.
5: Shape your future at UniServe Education September Fair. Meet representatives from over 100 top universities worldwide. Explore undergraduate and postgraduate opportunities, scholarships, and life abroad. Eldoret, Rupa's Mall, Tuesday, 22nd September. Mombasa, Bliss Resort, Wednesday, 23rd September. And Nairobi, JW Marriott, Saturday, 26 September from 10 a.m. Entry free. UniServe Education. Master your own destiny.
6: Kenya's premier Asian mix means always playing the very best.
7: East FM.

0: और इंडिया वाले आपको सलाम और नमस्कार कहते हैं. बिंदु ने भेजा है समय आपके लिए और कहा है कि देखो तप्त कुंड उत्तराखंड में है और दोनों बहनें राजस्थान के भीलवाड़ा की थी. बहुत मेहरबानी आपकी. दिनेश भट्ट क्रिकेट
1: जी वालेकुम सलाम. इंग्लैंड और श्रीलंका का दूसरा T20 मुकाबला आज है. पहला मुकाबला इंग्लैंड ने जीता और इंडिया और अफगानिस्तान का दूसरा मुकाबला इंडिया ने जीता. आज तीसरा मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली में शाम को 5 बजे.
0: बात है दिनेश भट्ट की. अच्छा मंजुला गोरसिया और कृष्ण सर्वे दोनों ने सही जवाब दे दिया है कि वो टकराव पीएनएस हुनैन है क्या और किसके साथ टकराव हुआ है वो बातें. और चिराग पटेल आपने कहा है कि ये है बिल्कुल सही जवाब है. रसीला आपका भी सही जवाब, मतलब कि ये रॉन्ग नहीं हो सकता. और सलमा अहमद करेक्ट आंसर. सर मंजुला गोरसिया ने भी एक सवाल आपके लिए भेजा है पर मैं आपको अभी इस सवाल का तो जवाब दे दूँ ना कि पीएनएस हुनैन एक पेट्रोल जहाज़ है पाकिस्तान का, पेट्रोलिंग करता है समुद्रों की, तो पीएनएस हुनैन और आईएनएस कोलकाता के साथ जाके टकराया है. आईएनएस कोलकाता भारत का नेवी का जंगी जहाज़ है जिसका वज़न 7,400 टन है.

know, people from the industry, they target Katrina because obviously she has just become a mother a few months back and she's still enjoying that phase of her life. इनको पता है इन गधों को कि ये जो ट्रोल कर रहे हैं दिस लेडी कॉल्ड कैटरीना कैफ बिसाइड्स बीइंग एन एक्ट्रेस शी ओन्स अ मल्टी मिलियन बिजनेस ओके वेयर शी इज रनिंग अ कॉस्मेटिक ब्रांड शी रन्स मेनी अदर बिजनेसेस सिटिंग एट होम प्रोबेबली डूइंग हर ऑनलाइन थिंग एंड हैविंग अ होल टीम वर्क फॉर हर सो आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल व्हाई दे डोंट हैव एनी सेंस एंड नो रिस्पेक्ट for women. So if they can't, you know, spare a Bollywood celebrity, are they going to spare any other woman on social media? And this is really sad. It also happens with men. I'm not just saying, I'm not being a feminist here. Ke nahi wo aurat hai iske liye uske saath ho raha hai. Ye aadmi logon ko bhi nahi chhodte, actors ko bhi nahi chhodte. But this is just not fair. I feel having some respect for people is very, very important, especially when she is a woman who've just had a child. Like, come on, man. Tumhari माँ या बहन जब बच्चा पैदा करती है तो क्या वो दूसरे दिन ही मिस वर्ल्ड लगती है? लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट.

दोनों बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Kenya's premier Asian mix.
1: लो जी नजम सुनो रमते दा दूसरा व्याह एदे दस्या है दो जनानियां वालियां दा की हाल हुंदा है।